0: जिम खाना
1: जी जी जी जेल रोड भी है, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं लाहौर से हूँ।
0: ठीक है जी, ठीक है।
1: वहाँ पर जेल रोड भी है और ये जिम खाना, लाहौर जिम खाना बड़ी मशहूर जगह है वो, और अभी तक वो ऐसे ही है। लेकिन वो एक भाई ने बात की थी कि उनका किराया जो गवर्नमेंट को देते हैं वो ऐसे पता नहीं 1000 रुपया वो भारतीय बात कर रहे थे, तो यही हिसाब वो लाहौर वाले का भी है।
0: अच्छा,
1: कि वो ऐसे लाइक गवर्नमेंट की जगह है लेकिन वो किराया उसका ऐसे है जैसे के ना होने के बराबर।
0: अच्छा, हाँ हाँ, चलो ठीक है सर। नहीं, थैंक यू आपने कॉल की, और एनी टाइम मोस्ट वेलकम।
1: बहुत शुक्रिया सर,
0: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सो लाके दो पैग लगता है सारा पिंड।

क्या बात है। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। खूबसूरत मौसम दे विच खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां ते मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संत।

क्या बात है सरदूल साहब दिया, क्या रीसा यार, क्या खूबसूरत आवाज़, और ऐसी आवाज़ जी साढ़े तो जुदा हो गई है, तो ऐसी आवाज़ा ने वार वार मुड़ के नहीं आना। सो 905-673-3337 डुबदे नू तिनका रब लगदा ते भुखे नू किणका भी रब लगदा, भरदे नू तिनका नहीं दींदा, जिहड़ा भरदा हुंदा ना रज्जिया हुंदा उहनूं तिनका नहीं दींदा, ते रज्जे नू रब भी जब लगदा, रज्जे बंदे नू रब नहीं चेते आउंदा, इह तां भुखे ते जिहनूं तकलीफां दुखां दे विच फिर उदों ही रब नू कहिंदा कि भाई हे रब्बा बस एक वारी कढ ला, ते फिर जदों रब कढ लैंदा फिर कहिंदे भाई तूं कौण ते मैं कौण। 905-673

0: अपने यहाँ से चेक करवाई है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सनग्लासेस, आपको अपने यहाँ से चेक करवाई है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ, आपकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए में चाहिए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-93 पर कॉल कीजिए 9054567333। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: हर हर रामियों का दिन सगला को विदा, अपनी कृपा धारी

साज जना होए कृपा ना बिकसे सब परवारिया कर सतगुरु आप सवारिया वड्डी यार जा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहा वन त्रिण त्रिपाण हरिया होए सगले जिया साधारिया मन छे नानक बल पाए पूरन इच पुजारिया रोग गया प्रभु आप गवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहा राज राज भोजन खावा मेरे भाई।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए मौसम अब बेहतर ही हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई ग्रेजुएशन की। और अभी बच्चों के स्कूल बंद हो जाने हैं, जून के एंड तक फिर छुट्टियां हो जाएंगी, बच्चों को भी गर्मी होती है। तो आप सभी का स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपके लिए बढ़िया सा प्रोग्राम पेश करते हैं। पहले तो आपको बता दें, आपने फादर्स डे आने वाला है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, टीवी बढ़िया लेके देना है, या फिर आउटडोर फर्नीचर और बारबेक्यू लेके देना है आउटडोर पार्टी करने के लिए। वो तो आप फादर्स डे के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशल सेल का फायदा उठाइए, topchoiceelectronics.com पर जाइए और फिर उनकी लोकेशन आपके लिए इंटर मॉडल लैंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन उनकी वर्क में है। तो और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने कहीं पे भी आपको बढ़िया सा आपको सोने के गहने लेने हैं, सोने के बार्स लेनी है, बढ़िया से आपको फादर्स डे के लिए गिफ्ट चाहिए, ब्रेसलेट्स, गोल्ड की चेन चाहिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए, उनकी स्पेशल का फायदा उठाइए। और जानकारी के लिए आप अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया उनकी स्पेशल सेल फादर्स डे की। किसी तरह का ऑर्डर करना है तो 905-673-0100 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए, उनकी फादर्स डे स्पेशल सेल का फायदा उठाइए। आप सभी को फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो अब आपके लिए ये बहुत ही एक प्यारा सा गीत हम सुनाते हैं। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, किसी किस्म का भी कोलिजन का काम करवाना है, तो आप कोलिजन का काम करवाने के लिए आप जाइएगा मास्टर कोलिजन डिपो, लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं। तो आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपको मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा, किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है, masterkollisiondepot.com पर जाकर आप जान सकते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिएगा, masterkollisiondepot.com पे जाके उनकी सारी जानकारी ले सकते हो। और गोर रोड पे लंदन में उनका गैराज है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब आपके लिए

0: एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। लेट्स गो टू बढ़िया सा प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं। तो गाना भी बहुत बढ़िया सा है, तो लेट्स गो।
1: चमन के फूल भी तुझे को गुलाब,
0: लता जी का गाया हुआ ये गीत है। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आए।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका संसार में क्या है कि जिंदगी में आपको अपने आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में देखना जानना बहुत जरूरी है, उसके समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो धोखा करने वाले लोग हैं, हेरा फेरा करने वाले लोग हैं, वो अलग अलग शक्लों में अलग अलग भेसों में आपके आसपास मंडरा रहे होते हैं और आपके ऊपर हावी होने के लिए कुछ भी करेंगे। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी के खुद मजदार हैं, आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने आप को खुद ही बचाना चाहिए, बजाय कि बाद में पुलिस के चक्कर पड़े और फिर और अदालतों के चक्कर पड़े। तो अदालतों के चक्कर में तो कोई आपके पैसे ही लगेंगे। अब इस हफ्ते देखो, इस हफ्ते में दो पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो गई अपने इन लाइन ऑफ देयर ड्यूटी। हमारी पूरी सहानुभूति उनके परिवारों के साथ है और साथ साथ उनकी जो समाज में उन्होंने इतनी सेवा की और हम सभी को दुख है, ये जो दुख है हम उनके परिवार के साथ मिलकर उनको शेयर करते हैं उनका ये दुख, क्योंकि वो कितने समाज के लोगों की जाने बचा रहे थे, सेवाएं कर रहे थे और उसी लाइन ऑफ ड्यूटी में उनका उन्होंने अपनी जान दे दी, कुर्बानी कर दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इसलिए हम उनका वो जितनी देर तक ये धरती है लोग उनको याद करते रहेंगे और उनकी कुर्बानियों को धन्यवाद करते रहेंगे।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਨ ਕ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1162-1163-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो मैं बात कर रही थी कि आपको अपना अपने आप से अपना ख्याल रखना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन जो होती है, कुछ भी सीखना है आपको तो एजुकेशन इज एजलेस, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप जरूर सीख सकते हो। जैसे AI है, अभी अगर आप घर पे बैठे ही अपने लिए कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो आपके लिए कितनी बड़ी नॉलेज की बात हो जाएगी।
2: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 and 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
1: तो अब अगर आप किचन और वाटर गॉल्फ में घर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो तो आप निश्चित फ्रेंड को कॉल कीजिए 519-546-1260 519-546-1260 पर आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अब आपके लिए आप एक और मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गीत है, देवानंद के ऊपर फिल्माया गया था और तेरे घर के सामने फिल्म का। Let's go to, अगर आप मूव होना चाहते हैं तो आपके लिए HK Movers कनाडा भर में मूव होने के लिए आपकी मदद करते हैं। तो अभी अपना ट्रक बुक करने के लिए आपके सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं 416-524-4416-524-6704 HK Movers। जी हाँ, तो आप प्रोग्राम, अगर आपको किसी तरह की भी आपने कोलिजन का करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है गोल रोड पे। तो आप और जानकारी उनके बारे में फिर आप अगर कोई भी किसी तरह की भी सेवाएं लेना चाहते हो तो आपके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया सेवाएं मिलेंगी। तो HK Movers।

आपका स्वागत है घर संसार में। आपकी दोस्त मीरा, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया सा गीत मैंने चुना है, तो रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर आरिया लाना चाहते और फादर्स डे के लिए गिफ्ट आपको खरीदनी, बढ़िया सा टीवी आपको चाहिए, जहाँ फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बारबेक्यूज लेने हैं फादर्स डे के लिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की फादर्स डे सेल का फायदा उठाइएगा। उनकी दो लोकेशन है आपके लिए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड, दूसरी लोकेशन गोल्फ में है। तो अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा 905-799-0045 पे आप टॉप टेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग, तो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, आपके सामान को पार्सल से पहुंचाते हैं, तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए। तो 416-524-6524-6704 आपके सामान को हफाजत से पहुंचाते हैं एचके मूवर्स। मूविंग के लिए आज ही कॉल कीजिए 416-524-6704।

जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर को कॉल कीजिए 905-625-0055। आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, न्यू इंडिया स्टेशन रेस्टोरेंट को कॉल कीजिए 905-814-1730-0581-4170। नानक राम चढ़ी कला तेरे पान स्वतला है वंडरफुल डे। रात को आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे बढ़िया सा प्रोग्राम लेकर के। तब तक के लिए नानक राम चढ़ी कला तेरे पान स्वतला। तो अब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और आपकी हो मीरा। तो आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हो। और मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और सराहते हैं।

0: यहाँ पे चेक करवाई है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सनग्लासेस, आपको अपने यहाँ पे चेक करवाई है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे चाहिए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-9333 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: हर हर राम जीओ का इन सकला को

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

जन्म मरण दुख होवे सिफ तख सम्मदी नूर अरसह कुरसह। तुद डिठे सजे पातशाह मल जन्म जन्म दी।

आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्श मिला हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाहो। वणजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहो। आपे वणज व्यापारिया प्यारा, आपे

नाम तेरा कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। मैं हाँ संतोष कौर, तुहाडा सारयां दा स्वागत करदी हां अपने शो रेडियो आवाज़ 'च। ते तुसीं सारे साडे नाल इंजी जुड़े रहोगे सवेरे 10 तों लै के 1 बजे तक। ते अज दा बहुत प्यारा प्यारा दिन है, ते बहुत प्यारे प्यारे सारे साडे लिसनर सानू सुन रहे आ। और साडे स्टूडियो दा नंबर हैगा 905-673

सो आज दे दिन दी शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही प्यारा वेदर है और उम्मीद कर दिया कि तुसी सारे तंदुरुस्त होगे और अपने फैमिली दे नाल अपने फ्रेंड्स दे नाल इंजॉय कर रहे होगे। सो अज हैगा साडा रेडियो दा प्रोग्राम 1 बजे तक और असी तुहाडे लागे इन्नियां सोहणियां सोहणियां तुहानूं डील्स देवांगे और बहुत ही खाण पीण दे मामले च वी अज इन्नियां सोहणियां डील्स है। देखो जी, फादर्स डे आ गया है और फादर्स डे ते असी अपने फादर्स नूं, अपने हसबेंड्स नूं, जो भी मेल परसनैलिटी साडी लाइफ च हैगी है, सारयां नूं खुश करना है क्योंकि सारा टाइम ये साडे लई साडा बैकअप, साडा सपोर्ट सिस्टम है और साडे सारयां दा इन्ना ध्यान रखदे हो। सो अज दा दिन की हर ही दिन साडे मां बाप दा हुंदा है, लेकिन चलो जी अज दा दिन असीं शुरुआत करदे हां। सारे अपने फादर्स लई कुछ ना कुछ स्पैशल जरूर करियो। कल दा दिन उन्हां लई भी कुछ स्पैशल आ, जरूरी नहीं है कि गिफ्ट ही देने हैं। तुसीं उन्हां नूं स्पैशल फील कराउण वास्ते तुहाडे कोल बहुत वधिया वधिया मौके हैगे आ, जिवें तुसीं नज़ारा रेस्टोरेंट ते जा सकदे हो। बहुत वधिया उन्हां ने अरेंजमेंट्स कीते होए, असीं भी सारी टीम दे नाल नज़ारा ते पहुंच रहे हां और इन्ना वधिया खुश कर देंगे तुहाडे पेरेंट्स नूं। सारी फैमिली दे नाल पहुंचो, उन्हां कोल बहुत वधिया सिस्टम हैगा नज़ारा दी टीम कोल। सो तुसीं नज़ारा ते पहुंचना आ और सारे ने अपनी फैमिली दे नाल उत्थे इंजॉय करना आ। सो नाल दे नाल असीं तुहानूं उन्हां दा नंबर भी दे रहे हां। सो नज़ारा दी टीम दा नंबर हैगा 9054512600, 9054512600। ते तुसी सारे ने सानू कॉल करके दसना है कि अजे तक साडे जेडे मेन होस्ट है अमन जी सानू ज्वाइन करन लगे आ, लेकिन उस तो पहला मैनू दसो तुहानू सारे नू मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि अज पायलट दी सीट ते मैं बैठी हाँ और मैं जानना चाहवांगी तुहाडे सारे दे फीडबैक्स। सो तुसी सारे ने मैनू कॉल करनी है साडे स्टूडियो दे नंबर ते 9056733337 9056733337, सारे कॉल करके एक बार दसो कितों तुसी सारे सानू सुन रहे हो ते अज दा दिन तुसी किवें स्पेशल प्लान कर रहे हो, सारे कॉल करके दसना है। ते बहुत ही वधिया दिन हैगा आ, सो अज स्पेशल प्लान सारयां दे होणगे ही होणगे। सो कितों कॉल कर रहे हो 9056733337 ते तुसी कॉल करनी है एंड तुसी सुन रहे हो साडा शो रेडियो अहा।

0: गली पहुंचो। कल है 19 जून नो मूवी रिलीज हो चुकी है। 40 दिन जरूर जाओ अपनी फैमिली दे नाल, अपने फ्रेंड्स दे नाल, ते इस मूवी का आनंद माणो। 140 हो गए ने। अमरजीत चीमा जी ने एक रिक्वेस्ट की है, कहिंदे कि उन्होंने फादर्स डे के इस मौके के उपर स्पैशली यह लाइना लिखिया सी, जो कि कमलप्रीत कौर जी ने यह अपनी आवाज़ दे विच रिकॉर्ड करके भेजिया। तो लो फिर आप सुनते हैं, तो तुम भी फादर्स डे इंजॉय करो, सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो,
1: अपने व्यू जरूर दोगे। सो आप शुरू करते हैं। 100 दारू 100 दवाई दारू ते एक प्यो, 100 चाचे ताई ते एक प्यो। चलो हाँ आप तुम मैं उन्होंने लिखिया सॉन्ग सुना। एक बापू दे सिर ते कर दे

0: से सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 400 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 400 सोलह 800 4200 1500 टीम सिद्धू लेके आए ने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील रोड ते एक नमी मास्टर प्लान कम्युनिटी जेदे विच 2500 तो भी ज्यादा नमे टाउन हाउसेज सेमी डिटैच ते डिटैच घर प्यार होंगे 2027 एंड 2028 दे विच ट्रेडिशनल टू स्टोरी फ्री होल टाउन हाउसेज बट डी बैकयार्ड ते अनफिनिश बेसमेंट नाल सिर्फ 7 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 700 रिलीसिंग वेरी सून सब तो खास डबल कार गराज वाले बट डे डिटैच घर सिर्फ 9 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 900 रिलीसिंग वेरी सून पब्लिक रि
1: to jald sampark karo at 416-302-0016. 416-302-0016. 416-302-0016. Kyalden shahar de vich the Gore Road and Mayfield Road te 2500 to vi jyada ghar taiyar ho rahe ne 2027 and 2028 de vich. Call team Sidhu 416-302-0016. 416-302-0016. Team Sidhu.

0: 515-8000 टोरंटो पेस्टरेस्ट सिक्के बंद काम दी गारंटी 647-515-8000
1: कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो
3: 4 to 6 पहला सुनते मंडे टू फ्राइडे 4 to 6 लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी जाने के देश परदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सैटरडे 1 to 4 शाम दे 4 देश प्रदेश नाल सांझ पौंदे हो देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551 देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षां तों 7 days a week, it's a hard day, unsung. Come on.

एमएस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके हैं ते करवा रहे हैं। इम्पॉसिबल इज नथिंग। तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश प्रदेश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ। फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551।

0: ते 98
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
0: ओ, काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते
0: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 Bowway Drive नियर चिंगोजी कॉल 9054502828 905-450-2828
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: ਦੋਸਤੋ ਫਾਦਰ ਡੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਡੈਰੀ ਐਂਡ ਟੋਮਕਨ ਤੇ 6885 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ ਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਕਿੰਗ ਬੈੱਡ, ਡਰੈਸਰ, ਮਿਰਰ, ਨਾਈਟ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਪਰ 1699 ਚ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋਗੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਰੀ। ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 6 ਚੇਅਰਾਂ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦੀਆਂ 399, ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ ਫਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਈਨ ਹਾਰਡ ਮੈਟਰਸ 199 ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੌਫੀ ਮੇਕਰ ਫਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਫਾ ਲਵ ਚੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ $699 ਦਾ, ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ ਫਰੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ 299, ਮੈਟਰਸ ਫਰੀ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 6885 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ, ਡੈਰੀ ਐਂਡ ਟੋਮਕਨ ਦੀ ਮੇਜਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ 647-262-0000, 647-262-0000, 647-262-0000, 647-262-0000, 647-262-0000 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ $200 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ $50,000-$60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ, ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ $80,000-$80,000 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ? ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ।
1: $30 billion दिया है, डेंटल केयर प्लान हो गया, चाइल्ड बेनिफिट हो गया, इतने सारे गवर्नमेंट स्पेंड करती है। सिमिलर वे में गवर्नमेंट एजुकेशन पे स्पेंड करती है, आप आसान से कोर्सेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग को आप हासिल कर सकते हैं, 30,000-100,000 की फंडिंग होती है, जिसका आज की डेट में हाफ पोर्शन क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट, आसान से कोर्सेज करेगी, कोई एज लिमिट नहीं है, कॉल करे अभी, असेसमेंट कराए।
0: एक ये भी दसो जी, जिदे विच ਗੌਰਮੈਂਟ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਕੱਲਾ ਲੋਨ ਰਹਿ ਜੂ ਮੰਨ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਭਾਈ, ਇੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 60,000 ਫੰਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਇਹ ਇਤਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਾਮ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਆਪਕਾ नोटिस ऑफ असेसमेंट का इनकम सिस्टम पे डालना है, गवर्नमेंट के कैलकुलेटर पे, गवर्नमेंट का कैलकुलेटर है, हमारा नहीं है, तो उसमें आपका 2024 का नोटिस ऑफ असेसमेंट की इनकम डालनी है हमने, इतनी कम आपकी इनकम है और जितना आपका फैमिली साइज ज्यादा है, आप मैरिड, आपके किड्स, आपको ज्यादा फायदा है, हम जरिया है, कोई इसमें कैच है ही नहीं, गवर्नमेंट के पास आपके कागज पहले से ही है, आप उसमें हेरा फेरी कर नहीं सकते हैं, कोई कैच ही नहीं है, ना सेटिंग है, ना कमीशन है, ना अप्रोच है, कोई कोई सेटिंग ही नहीं है ना भाई साहब, जितनी कम इनकम है
0: ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਹੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚ ਜੋਬ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਗੱਲ ਹੋਵੇ?
1: इस काम में कोई हिडन का हिडन चीज है ही नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ, क्यों, क्योंकि हमें आदत ही ऐसी है, मैंने भी अपनी जब मोर्टगेज कराई मैंने भी कमीशन दिया, तो लाइक बट इस काम में कोई सेटिंग कोई अप्रोच है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, जितनी आपकी इनकम कम है, कम कम कम, तो ही आपको गवर्नमेंट फंडिंग करती है। अब आप मान के चले इंटरेस्ट लाइक इसमें फंडिंग के दो पार्ट, एक तो ग्रांट और एक लोन है, जो ग्रांट है वो तो नॉन रिफंडेबल पैसा है, फैमिली ऑफ फोर को अप टू 80,000 की फंडिंग मिलती है, $80,000 की, जिसमें से $40,000 तो ग्रांट ही वापिस ही नहीं करना, $40,000 जो है रेस्ट वाला वो ऑप्शनल लोन है, जो कि 0% है और 1.5 साल बाद भी उसका ब्याज 2.5% है पूरे साल का, कोलैटरल फ्री, सिक्योरिटी फ्री फंडिंग गवर्नमेंट आपको एजुकेशन के लिए दे रही है, आपने खर्चे पूरे करें, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप पैसे को कहीं भी कैसे भी यूज करते हैं, और लाइक आप मान के चले कोई ऐसा भी नहीं कि आपने पढ़ाई के बाद उसी फील्ड में जॉब करनी है, कोई कैच नहीं, उल्टा आप ये मान के चले हमारे लाइक बंदे जो है वो जो कर रहे हैं वो सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर कोर्स करके फंडिंग ले चुके हैं गवर्नमेंट से, लेकिन एक महीने के बाद गवर्नमेंट ग्रांट बंद कर रही है नेक्स्ट अकेडमिक ईयर जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट जीरो कर रही है। आपको आज की डेट में बड़ा अच्छा फायदा है, कोई कैच नहीं है, लास्ट हफ्ते 34 बंदों की फंडिंग उनके खाते में गिरी है हमारी, उसके बाद थी साथी थोड़ी सी कितनी फंडिंग उनके खाते में जाती है, हमारे खाते में कुछ नहीं आता, पहली बात बोल्ड लेटर्स में कह रहा हूँ, फंडिंग क्लाइंट के अकाउंट में आती है। उसके बाद वो अपनी ईमानदारी से 29 बंदों की मुझे फीस आ चुकी है, कितनी फीस आई है, $199 या $499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स, कोई कैच नहीं है, और मानेंगे 29 बंदों के फोन आई, 5 बंदे फोन नहीं उठा रहे, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट, हमने उनको देखना जिन्होंने फीस दे दी है राइट, हम उनसे खुश है, तो देर इज नो कैच इन इट, एंड टू एंड आपने हमारी फीस 90 दिन के बाद देनी जब आपके फंडिंग आ जाती है 60 से 90 दिन के अंदर। कॉल करें, अभी कॉल करें, असेसमेंट कराएं, हमारे ऑफिस आए, प्रॉपर ऑफिस है जी, 7 बंदों का स्टाफ है, कोई कैच नहीं है, और लाइक 218 एक्सपोर्ट बुलेवार्ड पर ऑफिस भी आ सकते हैं मंडे को।
0: बहुत अच्छे जी, सो एक बार नंबर जरूर साझा करियो नागपाल जी, ते एक पढ़ाई बारे दस दो, जेडे काम लई गवर्नमेंट पैसा दे रही आ इहदे विच केड़े केड़े कोर्स ने, जेडे तुसी दस रहे हो बजुर्ग बहुत करदे ने ओह केड़े कोर्स ने, भैणा ने ओह PSW वर्गे कोर्स करदे ने, कई बंदे HVAC वर्गे टैक्निकल कोर्स करदे ने, कई कॉलेज च जाण वाले ने, कई घर बैठण वाले ने, एक बार जेडे काम लई गवर्नमेंट ए पैसा दे रही आ ओह केड़े केड़े कोर्स ने, किन्ने क सौखे ने, किन्ने क औखे ने?
1: जो मुश्किल कोर्सेज है वो है HVAC, वो है ECA PSW, उसमें आपका इनपुट लगता है, आपके इंटर्नशिप तो होती है, आपको जाना पड़ता है कॉलेज वंस अ वीक लाइक सम टाइम इन अ वीक राइट। अब उसमें आज भी लाइक आई थिंक 3 बंदे एनरोल हुए हैं उसमें, और लाइक जो मेजर क्लाइंट लाइक करते हैं वो है फुली ऑनलाइन कोर्सेज जो हमारे मिडिल एज के लोग लाइक करते हैं, और लाइक आसान से कोर्सेज है, असाइनमेंट है, एग्जामिनेशन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है हमारे, इतने ही लाइक 50-75 ईयर्स के लोग हैं जो करते हैं घर से फुली ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, फंडिंग हासिल कर चुके हैं, फंडिंग खर्च भी चुके हैं, ये नहीं कह रहे थे बच्चों को दे दिए हमने पैसे।
0: 437-264-31

0: जी।
1: जी बहुत
0: धन्यवाद जी।
1: शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 416-233-7368 416-233-7368 अगर तुसी कर्जे दे विच घिर गए हो जी, ते फिर जदों साडे चिंता चिता बराबर, जदों साडे मन दे विच चिंता, साडा दिमाग हर वक्त एक चीज़ नूं सोची जांदा, ते असी घर हुंदे होए भी घर नहीं हैगे, तुसी परिवार च हुंदे होए भी परिवार च नहीं बैठे। जी थानू बच्चे बुलाउंदे आ ते तुसी, क्योंकि दिमाग तो होर पासे आ, सोची तो कुछ असी हो जाने, टेंशन तो सानू पेमेंटा दी आ, ते असी बच्चों फिर भज के पैने भी ये पता नहीं एवं फालतू ही गल्लां करी जांदा, पर बच्चों ने तो बच्चे वाली गल्लां करनी ना, छोटिया छोटिया है ना। सो मैं कहना यह थानू चाहनी हाँ कि अगर तुसी कर्जे दे विच घिर गए हो फॉर एनी रीज़न, किसी भी तरह का कर्जा जी, तो उन्हों जिनी छेती तुसी निपटाओगे उन्नी छेती तुसी सुखाले हो जाओगे, थोड़ी जिंदगी सौखी हो जाऊगी, थोड़ा मन का सुकून वापस आ जाऊगा। तो क्योंकि जे तुसी क्रैडिट कार्ड का कर्जा देना या CRA का कर्जा देना, उदे ते व्याज लगता, किसी का 19% आ, किसी का 22% आ, कोई 25% चार्ज करता, सो मूल दे विचों तो कुछ घट होना नहीं, सगो व्याज थानू वध पे करना पैना। सो किसी तरह का कर्जा थोड़े सिर चढ़ गया जी, तो थानू लगता है भी हुण व्याज भी नहीं पे होना, कित्थों लिया ये पैसे, तो मूल पे करन दी तो बहुत दूर की गल जापती है, अपने आप नू कर्जे तो बाहर कढ़ना, तो एक कॉल थानू करनी पैनी है, थोड़ा जा उद्यम थानू करना पैना, उद्यम अगे लक्ष्मी पक्षी अगे पौन, सो उद्यम थानू करना पैना जी, कोशिश करनी पैनी है, तो जो तुसी ये उद्यम करोगे तो थानू बहुत वधिया सलाह मिलेगी हरिंदर घूमन जी पासों। सो तुसी कर्जे तो बाहर निकलना, तो ये नंबर नोट कर लियो, 416-444-4444 416-400-4444 416-444-4444 नंबर पर कॉल कर लियो। डोंट वरी, किसी भी तरह का कर्जा बस इन्हों डिस्कस कर लो, चाहे प्राइवेट मॉर्गेज है, चाहे क्रैडिट कार्ड का कर्जा, चाहे CRA के पैसे देने आ, चाहे किसी भी तरह का होर कर्जा जिहड़ा थोड़े तो पे ऑफ नहीं हुंदा, क्योंकि घर भी चलाना, रोटी भी खानी है, अपनी छत भी सही सलामत रखनी आ। हुण पावर ऑफ सेल दीआं प्रॉपर्टीज़ बहुत वध गईआं कंपेयर टू जे असीं पिछले सालों की गल करते हैं, क्योंकि खर्चे वध गए, तो इनकम साडी वधी नहीं हैगी, मॉर्गेज तो पे करांगे, जे मॉर्गेज नहीं जाऊगी तो बैंक ने फिर साडे पिछे आ जाणा भी जी घर छड्डो। सो अपना छत बचा के रखनी आ, रोटी पानी अपना परिवार बचा के रखना, तो कर्जिया तो बाहर निकलना, 416-444-4444 416-400-4444

कर सकते हो, इंटीरियर एक्सटीरियर पेंटिंग, किचन पेंट करानी है या पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करानी है। रफ्तार पेंटिंग 647-996-5530, 6479965630। पैसों की जरूरत पै गई है, मॉर्गेज करानी चाहते हो पर मॉर्गेज हो नहीं रही, तो जरूर थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। तुम अपना सनैरियो उन्होंने नाल डिस्कस कर लेना। घर की एक्विटी टेकआउट तुम्हें करनी है फॉर एनी रीजन, पैसों की जरूरत पूरी करनी है, तो जी एन ई मॉर्गेजस तो मयंक भटनागर 647-702-2023 6477022023 ते कॉल कर लेनी है जी। तो स्टीवनस फर्नीचर ने कुछ स्पैशल जोड़े है फादरस डे के लिए भेजे थोड़े लिए, एक्सेंट चेयर इन फैब्रिक जे कि स्टार्ट होंगे सिर्फ $99 के थानू मिल सकती है। डबल या क्वीन साइज बैड $179 $179 थानू डबल या क्वीन साइज बैड मिल सकता जी। तो क्वीन साइज मैट्रस सिर्फ $89 के थानू मिलना। और बहुत सारिया डील्स आ जो स्टीवनस फर्नीचर तो ग्रैब कर सकते हो, टोरबम एंड स्टील्स इंटरसैक्शन से 905-790-0560 9057900560 ते कॉल कर सकते हो जी। तो जरूर तुसी अपना ख्याल रखना, इस वीकेंड को खूब इंजॉय करना, तो नाल दी नाल तुसी प्रोग्राम दे विच अपने बिजनेस नू एडवरटाइज करना चाहते हो। मेरा फोन नंबर 647-234-6000 6472346000 नंबर ते कॉल कर सकते हो। आस करती हाँ तुसी प्रोग्राम नू इंजॉय किया होगा। अगले शनिवार फिर मिलेंगे जी रेडियो अंदाज दे विच। पर वलो थानू सारयां नू बहुत थैंक यू सो मच। तद तक अपना ख्याल रखो, तो मेगा मिलेंगे अगले शनिवार। पर वलो सत श्री अकाल, शुभ अकाल, शुभरात्रि, टेक केयर। दिखा दिए जी सॉन्ग।

समय चलते हैं कहकशां के उस दौर में, सुखनवरी के उस पार, जिसे बहुत ही उमदा आवाज के साथ नवाजा है जगजीत सिंह ने। इस गजल से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में मोहब्बत ना हो उसका एहतराम नहीं होता, जो दिल को ठेस पहुंचाए ना हो इंसानियत जिसमें, वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। तो शायर उसे कहते हैं जो अपनी कलम की एक बूंद से समंदर लिख देता है। तो आइए कुछ ऐसी ही गजल में आपको डुबोने के लिए एक बहुत ही उमदा आवाज, जिसे जग को जीतने वाली आवाज कहते हैं, जगजीत सिंह की आवाज।